फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रेडी करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी

0: प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार। सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

इस संसार में लाखों जीव जंतु रहते हैं जो खुले आसमान के नीचे निश्चिंत जीते हैं। कभी सोचा है कि क्यों मनुष्य इस तरह निश्चिंत नहीं जी पाता? क्योंकि उसे ना तो दूसरों पर भरोसा है और ना ही खुद पर। और जहां भरोसा ही नहीं, वहां कैसी राहत? खुद पर और उस परम पिता पर भरोसा ही जीवन को सुखमय बना सकता है।

इस जीवन में मोह केवल उनका ही होता है जो मोह को हरने वाले हैं, और कभी कभी उनके दरस का मोह हमें खींच ले जाता है प्रकृति के समीप और हम आत्मविभोर होते हैं। आत्मविभोर का ये वक्त तब भी आता है जब देश प्रेम हमारे मन में जाग उठता है। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। 7 बजे से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से समाचार प्रभात। 8:15 से सुनिए त्रिवेणी। सुबह 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। 10 बजे से सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज का पुनः प्रसारण। गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12 बजे से हिंदी में समाचार। 12:05 से यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम सुन सकते हैं और 2 बजे से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण सुनिएगा। 2:15 से दोपहर समाचार। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत कार्यक्रम का समय है 3 बजे का। नाट्य तरंग कार्यक्रम सुन सकते हैं 3:30 से। आज सुनिए नाटक कंटीला रास्ता का दूसरा भाग। मूल तमिल लेखक है नित्यामूर्ति, हिंदी अनुवाद किया है ए शौर्य राजन ने, निर्देशन वीपी दीक्षित बटुक्का। 4:00 उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी, प्रस्तुति थी श्री कामले की। 5:00 से छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने। 6:00 से हिंदी में समाचार। 6:05 से तराने नए पुराने का पुनः प्रसारण, माफ कीजिएगा, तराने नए पुराने जारी रहेगा। और 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आप सुनेंगे। 6:35 से संध्या रंजन। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए विविध भारती के खजाने से गायक पंडित सी आर व्यास से बातचीत। 7:00 विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य का था, इस श्रृंखला में आज सुनिए महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य का था। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, वैन

प्ले इलेक्ट्रिक गिटार के साथ होंगे ये कलाकार हैं आज के। लड़ी नजरिया लड़ी, ये झलके सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में। लेखन राजेश भदौरिया का, निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। चित्रलोक रात 8:15 से 8:45 से समाचार संध्या 9 बजे से सुनिए आपके लिए ये कार्यक्रम। 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक आनंद एल रॉय पर। छाया गीत का प्रसारण होगा 10 बजे से। 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से विविधा। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरितमानस। सुनिए 233वीं कड़ी।

भारत के शील तथा यश को निर्मल चंद्रमा की संज्ञा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कवि की सुबुद्धि को चकोरी के समान माना है। श्री रामचंद्र से भरत के गुण छिपे नहीं हैं, जो उन्हें धर्म की धुरी धारण करने वाला मानते हैं। पिता की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति में राज्य का कार्यभार, कुल की प्रतिष्ठा, धर्म की मर्यादा, पृथ्वी, धन तथा घर परिवार का पालन करके ही सूर्य कुल की रक्षा की जा सकती है। अनुज भरत के लिए श्री राम की आज्ञा है कि वे ऐसा ही करें।

0: સરિતા
1: મિત્રો નમસ્કાર. આપ સુધી શ્રોતાઓ કે લીએ આજ હમ ચુન લાયે હૈ એક પ્રખ્યાત ગાયક કલાકાર સે કી ગઈ ભેટ વાર્તા. આઈએ સુનતે હૈ.
2: સંગીત સરિતા કે શ્રોતાઓ, આજ હમારે સ્ટુડિયો મે ઉપસ્થિત હૈ સુપ્રસિદ્ધ ગાયક પંડિત સી આર વ્યાસ. व्यास जी नमस्कार.
3: नमस्कार
2: व्यास जी. आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं. इस बारे में आपके क्या ख्याल
3: है? हाँ, वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है. वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है. वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है.
2: बहुत सुंदर. व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया.
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से. लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था. जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी.
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर.
2: अच्छा.
3: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी.
3: उसी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी,
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया. और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है.
2: अच्छा. लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं.
3: हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन
2: जी
3: थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था. लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था. मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मुझे अच्छी तालीम मिलेगी. जब मैं बम्बई आया मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी.
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने के
3: राजा राम बाबा पराडकर जो थे मेरे गुरु कैलाशवासी पंडित राजा राम बाबा पराडकर से तालीम शुरू किया.
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है.
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं.
2: अच्छा.
3: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है. उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे.
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है.
2: अच्छा.
3: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा.
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है.
2: अच्छा.
3: तो अभी आलाप में

0: सुरों का पुंज होता है
1: जी,
0: जैसा केदार में लेंगे मम रे सा रे सा रे रे सा सा
1: जी हाँ,
0: मम रे सा रे सा रे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना, मम रे सा रे सा रे रे सा सा, मम रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, पापा मम रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा, दादा पादा पापा मामा पापा मम रे सा रे सा रे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए, ऐसा एक रूल था यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी,
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोल अंकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था, ख्याल
0: ख्याल हाँ ख्याल तो याद करना पड़ा, ख्याल तो पहले अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था ना तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेगा, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चलेगा। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे, अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: हाँ, बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे।
1: हाँ।
0: जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी हाँ,
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते मिलाए तो सिंह खा साहब के पास बहुत साल वो सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत भावनिक गाते थे,
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी,
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली बोली जो बागोला बैगुंदेला मोरे मालनिया, जमेली बोली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है, वो सब गायके ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे ही गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेगा ना तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: रे ऐसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना,
1: जी
0: ये उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया।
1: जी
0: अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई
1: अच्छा
0: उपज का

0: सुर लगाने का तरीका
1: जी,
0: और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है। वो इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख दी जाए, प्रसिद्धि भी पाले।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड हैं
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे
1: अच्छा।
0: सामने
1: और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारा देश का,
0: बहुत अच्छे
1: संगीत का।
0: अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं,
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए उसने, देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार।
0: भी आपका नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास।

से की गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंटवार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आज पंडित सीआर व्यास हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार हैं जो हमने उनसे की गई भेंटवार्ता में सुने, और उनका गायन भी हम सुनेंगे। लीजिए सुनते हैं पंडित सीआर व्यास का गाया राग बिहाग। बंदिश के बोल हैं ले जा रे जा पथिकवा। हारमोनियम संगत अनंत राणे की, तबला संगत विभव नागेशकर। राग बिहाग, गायक पंडित सी आर व्यास।

पंडित सी आर व्यास का गाया हुआ राग बिहाग आपने सुना। श्रोताओ, आज हमने पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता सुनवाई है। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, शंकर जयकिशन का संगीत और बोल शैलेंद्र के।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अमर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नास्तिक फिल्म का ये गीत श्री रामचंद्र और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजों में आपने सुनी। कवि प्रदीप के ये बोल श्री रामचंद्र का संगीत, कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: मोहब्बत कर लो जी, मान लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात।

आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मुबारक बेगम की आवाज में ये गीत है रिश्ता फिल्म से, पंडित फानी ने इसे लिखा, के दत्ता का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना पिया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब सुनते हैं मिलवा मंगल फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज है सीएच आत्मा की, डीएन मधुक के बोल, बुल्लो सिरानी का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जाने मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अजरू सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। बासु मनुहारी का संगीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुनिए मामा भांजा फिल्म से अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में लैला मजनू फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

एक से बढ़कर एक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, वर्मा मलिक के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, हम हैं रही प्यार के विविध भारती पर, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत, फिल्म ढोंगी, सुनिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में

0: बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार

0: को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पर अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे।

0: प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

त्रिवेणी के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आपको यात्रा करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यात्राएं जीवन के अनुभवों के विस्तार के साथ मानव के यानी हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं जीवन को भी एक यात्रा कहा गया है। प्राचीन समय से ही कवि और मनीषी यात्राओं को महत्व देते रहे हैं। यात्रा करना हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है। यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें नई जगहों को देखने के साथ साथ खुद को जानने और समझने का भी मौका देती है।

जब आप यात्रा पे निकलने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो कुछ बातों का ख्याल भी रखिए। यानी यात्रा को सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए हमेशा सफर का आसान फार्मूला अपनाएं, यानी कम सामान सफर आसान। यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ के मौसम और घूमने की जगहों की जानकारी जरूर बना लें। ये यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अलग अलग जगहों को, वहाँ के लोगों को और उनकी संस्कृति को करीब से देखने पर हमारी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ता है। यात्रा के दौरान हम अनजाने में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। स्थानीय लोगों को जानना, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना, नई नई भाषाएं सीखना, नई संस्कृतियों से पहचान होना, छोटी मोटी चुनौतियों का खुद सामना करना, इन यात्राओं से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये यात्राएं हमें ऐसे अनुभव और यादें दे जाती हैं जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं।

है। अपने साथ जरूरी कागजात, जरूरी दवाइयाँ, मौसम के अनुसार कपड़े और एक पावर बैंक जरूर रखें। घूमने जाने से पहले यात्रा का मार्ग, रुकने की जगह और बजट का खाका तैयार कर लेना चाहिए। पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी जुकाम की दवाइयाँ हमें साथ रख लेनी चाहिए। मूंछ या दर्द के लिए स्प्रे भी रख लेना चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और टिकट का एक अलग ट्रैवल वॉलेट बना लेना चाहिए। सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं आता है, इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने पास पर्याप्त कैश जरूर रखना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हों, जैसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, कहीं भी जा रहे हों, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करें। सफर के दौरान साफ सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करें। सफर के दौरान साफ सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक बस कुछ ही पलों के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये आरती, और श्रेयस पुराणिक और जैकी के संगीत के साथ इसे आपने सुना। जब भी किसी काम को हम शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस

काम को हम इस नियत समय में पूरा कर लेंगे, लेकिन हमेशा या कहें कि अक्सर हम ये कहते हैं कि समय की कमी पड़ जाती है। समय की कमी की शिकायत अक्सर हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक को ज़्यादा समय मिल रहा है, किसी दूसरे को कम, क्योंकि सभी के पास वही 24 घंटे हैं। तो कैसे हमारे पास उन 24 घंटों में से समय बचता है कम, और क्यों हम नहीं कर पाते समय पर काम पूरा, इस पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उसके पहले कार्यक्रम का ये गीत।

देवी कुमार और प्रिया शर्मा की आवाजों में आप सुन रहे थे एबीसीडी टू फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा मयूर पुरी ने, सचिन जिगर का संगीत। तो समझते हैं कि क्यों हमारे पास हो जाता है वक्त कम, इसकी एबीसीडी क्या है, क्योंकि समय तो सबके पास सेम ही है, लेकिन फिर भी समय की कमी कुछ लोगों के पास होती है। तो भाई इसका कारण ये हो सकता है कि कई बार हमारे पास योजना नहीं होती सही कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम अपने दिन में कौन कौन से काम पूरे करेंगे, प्राथमिकताएं किस तरह से तय करेंगे कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि योजना तो होती है कि इतने बजे हम ये काम कर लेंगे और आगे फिर ये काम करते जाएंगे, इस तरह से पूरा दिन हम प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ और काम आते जाते हैं, अन्य लोगों के कुछ काम जुड़ जाते हैं, परिवार के सदस्यों के, लोगों के, दोस्तों के, कलीग्स के, तो इस तरह से हमारा काम फिर उससे बाधा इसमें आ जाती है और आसानी से लक्ष्य से हम भटकते हैं इन दिनों, ये बहुत ही आम है।

जैसे कि सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन्स है, तो ये और कई भी अलग अलग एप्स भी हैं, गेम्स हैं, इसके जरिए भी हम कई बार अपने काम से भटक जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि काम के बहुत सारे जो समय है, जो बहुत सारा वो इसमें लग जाता है और बिल्कुल नहीं पता चलता। ऐसा लगता है कि बस पलक झपकी और 1 घंटे का समय निकल गया। तो इन चीज़ों का जो मोह है वो हमें अपनी ओर खींचता है ना।

0: बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, केकी की आवाज, कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, जहां आज हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपना समय बचा सकते हैं और अपने जरूरी कामों में लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि समय नहीं है और बहुत से काम करने हैं या बहुत सी चीजें करनी पर समय नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम समय किस तरह से बिता रहे हैं ये नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अपने दिन को इस नजरिए से देखना शुरू करना चाहिए कि हमें यह समझ में आए कि पूरे दिन को हम किस तरह से बिताते हैं, किस तरह से कहाँ कैसा समय लग रहा है हमारा। और ये भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा समय है, कब हम इस तरह से बैठे होते हैं या इस तरह से अपने फोन में लगे होते हैं, कह सकते हैं कि जब समय व्यर्थ जा रहा होता है, कुछ भी मनोरंजन भी नहीं हो रहा होता हमारा, क्योंकि मनोरंजन में भी अगर समय लग रहा हो तो वो भी व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। पर कई बार ऐसा होता है कि समय यूं ही जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। तो जब आप इस तरह से अपने समय को देखेंगे तो यकीन मानिए अपने उस समय को पहचान लेंगे जो व्यर्थ जा रहा है, और फिर आपका मन खुशी से झूम उठेगा।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत के साथ, जुनिता गांधी की आवाज दंगल फिल्म के इस गीत में। और असली दंगल तो तब होता है जब हम करना चाहते हैं मनमानियां और एक और होता है लक्ष्य। अब इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना ही तो है समय संयोजन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को जब नियमों में ढालना शुरू करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल भी खेलने के लिए या फिर कुछ भी खाली टाइम अपने पास नहीं रखेंगे और एकदम खुद को कस के बस काम में लगा देंगे। भाई ये भी बड़ा ही गलत काम है।

0: रघु दीक्षित की आवाज में शेफ फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं भरतलाल हरिंद्र और साथी।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: एमो स्याही लगे है, समोसा खराब हो जाई, एमो नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल।

0: पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
1: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
0: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
4: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
6: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करूं?
5: तहूं यार।
7: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: भरतलाल हरिंद्र और साथियों के स्वरों में आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसिया ही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल ला डारबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
11: जी,
10: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
11: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
10: पर ये होगा कैसे?

0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लोक संगीत आप सुन रहे हैं, कलाकार हैं भरतलाल हरिंद्र और साथी।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: भरतलाल हरिंद्र और साथियों के स्वरों में आइए सुनते हैं ये गीत।

सूरज की पहली किरण से दिन की शुरुआत करने का नाम उमंग है। गिरने के बाद उठकर मंजिल के लिए दौड़ लगाने का नाम उमंग है। तो आइए करते हैं सबरंग की उमंग भरी शुरुआत इस गीत के साथ।

लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे भरतलाल हरिंद्र और साथी। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी।

0: न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ल नहीं रखना चाहिए।
1: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रहते जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
2: एकर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
5: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
7: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करूँ?
6: तहू यार,
8: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: श्रोताओं, ये उमंग, ये उत्साह, ये जोश जुनून हमें जिंदगी में ऊर्जा और खुशी से भर देता है। कभी देखा है आपने कोई अलसाया थका हुआ सा इंसान उत्साह से लबरेज हो? नहीं ना? तो जिंदगी में आए कैसा भी पल, कोई भी मुश्किल, हमारा जोश हमारी उमंग बनी रहे तो कठिन समय भी हमारी ऊर्जा नहीं छीन पाता।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: श्रोताओं, मुश्किलें, परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां हर इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये आती हैं और चले भी जाती हैं, हमें बस इससे डील करना, इसका सामना करना आना चाहिए। जिंदगी की अवश्यंभावी परिस्थितियों से घबराना कैसा? अरे सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको,

0: अरे भैया पहली जुन्ना तेल ल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल ल डालबे।
1: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ल काय करू?
0: तहू यार,
2: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, एक उमंग से सराबर होकर खिलाड़ी पूरी ऊर्जा से खेल के मैदान में उतरता है। उसकी तैयारी, उसका आत्मविश्वास, उसका जुनून उसे मैदान में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनुकूल माहौल देता है। वो सिर्फ अपना 100% देने पर ध्यान केंद्रित करता है और खेल भावना से खेलता है। खेल भावना यानी हमारी कोशिशें, हमारा प्रदर्शन हमारे हाथ में है, मगर हार भी जाएं तो टूटना नहीं है, बल्कि अपने अगले बेहतर प्रदर्शन के लिए कमियों को दूर कर फिर से मैदान में आना है। यही जिंदगी है।

0: इसी के साथ सबरंग से अनुमति दीजिए अपने दोस्त प्रशांत को। सबरंग अभी आप सुन रहे थे। FM पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसारित करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से।

0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तहत 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत ने बताया कि आज जो बच्चे पोलियो की खुराक नहीं ले पाएंगे उन बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6वें और 7वें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि 2 राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिनों के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री डॉ. बुद्री ताती ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज को उत्थान, लोक संस्कृति के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर ताती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के छोटे से गांव से निकलकर डॉक्टर ताती ने 4 दशक से अधिक समय तक बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 29 जून को छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिलाई स्टील प्लांट BSP से कथित 250 टन लोहा चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 1 जुलाई को न्याय की मशाल यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.6 MHz पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा। पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के

0: निर्भर करथे। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसियाही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करूँ?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: मधुरिमा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोहर उदास की आवाज से। रचना हस्तीमल हस्ती की है।

तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें, है ना।

0: सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट की क्या जरूरत है, तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी।
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन्हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक, थर्माकोल या डिस्पोजल कप, गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसे समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा, चावर, तेल, दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल, नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल, सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
11: जी,
10: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
11: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
10: पर ये होगा कैसे?
11: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
10: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
11: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
10: बस
11: बस,
10: समझ गया।
11: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
12: आरबीआई कहता है,
13: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
14: अलका याग्निक के स्वर में आइए सुनते हैं जयप्रकाश मिश्रा की रचना, संगीत सुदीप बैनर्जी का है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

0: मम्मी पापा आ गए।
1: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
0: मम्मी प्लेट लाना।
2: प्लेट की क्या जरूरत है, तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
3: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
2: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी।
1: हाँ जी,
0: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
3: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
0: ये कर अलावा प्लास्टिक, थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
4: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला माँ एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें, है ना सरल। सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
6: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
4: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना, ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू
7: तहू यार।
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
4: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: मिथुन की आवाज में आइए सुनते हैं सईद कादरी की रचना, संगीत मिथुन का है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत

0: सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
4: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
3: तहू यार,
5: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: मधुरिमा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कविता पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फाकिर की रचना। संगीत कुलदीप सिंह का है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो

0: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर हिट।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
2: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
3: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करूं?
2: तहूं यार,
4: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: जसविंदर सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं आदीन ताजी का कलाम। संगीत अमरजीत बाजवा का है।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
0: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
9: जगजीत सिंह की आवाज में आइए सुनते हैं कवर मोहिंदर सिंह बेदी की रचना, संगीत घनश्याम वासमानी का है।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10:55 होने को हैं। कृपया हमारे महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जयपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:55 हुए हैं।
1: ये
0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से
1: करने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा।

0: लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए, सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है।

C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं।

साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है।

लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को

कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय

जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को

रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से

0: ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार।

मन की बात मा एक घाव फेर आप सब्बो मन ले जुड़िया के मुला अब्बड़ आनंद होवत हे। 2026 के आधा बछर पहावत हे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश ह कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा औ आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े एक ठन कार्यक्रम मा सम्मिलित होए के मौका मिलिस। उहां INS दूनागिरी, INS संशोधक औ INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा मा सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन और उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी हे। संगवारी हो, जूनेज के महीना मा विमानन क्षेत्र मा घलो देश एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया हे और C-295 विमान हा अपन पहली उड़ान पूरा करे हे और ऐसने 40 ठन विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत हे, रोजगार के अवसर बढ़त हे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत हे। इही महीना DRDO ह स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे हे। एला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगास तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगवारी हो, जून मा एक ठन और आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठिया मा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत हा कुल 114 पदक जीते हे। एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित हे। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हौं। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मन के मन होथे और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेथे तक कोनो भी शक्ति वो मन ला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जनभागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जनभागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया मा बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे हूं। मैं कहे रहे हूं कि जहां तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कहे रहे हो कि विदेश में छुट्टी मनाए ले बाँचें। मैं लोगन मन ले कार के सामूहिक उपयोग ला घलो बढ़ावा दे के अपील करे रहे हो। मैं किसान मन ले रसायन मुक्त खेती बर खेत बचाए खातिर और प्राकृतिक खाद के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग के आग्रह करे रहे हो। संगवारी हो, मैं देश के हर नागरिक के आभारी हों कि मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओ में अपन सहयोग करत हैं। मुला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा लेही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया में ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं।

वारी हो। कार के सामूहिक उपयोग ल लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जेन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत है। यही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत है। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जन भागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमर देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गे हे। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रही थे। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है त ऐसन जिनिस दिए जाए जेन मुश्किल बखत मा कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर मा बिहाव के मौका मा ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ल 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परिवार ह देखे रहीस कि दुर्घटना के बाद परिवार मन ल आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़ते। ऐसे बखत मा एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाते। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2,00,000 रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन हैं, माई लोगिन मन हैं। ये योजना ले पीड़ित परिवार ला अब तक जेन हिसाब मिले है 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हैं। संगवारी हो, यही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो ओतकेच महत्तम के है। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2,00,000 रुपया के बीमा कवर देते। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एखर अंतर्गत देश के करीबन 11,00,000 परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी है। कहूँ कोनो दाई लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलीस, कहूँ कोनो पत्नी ला घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलीस। संगवारी हो, कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि और एक नानुक कदम ले हो सकत है। नानकुन निर्णय घलो बहुते बड़का बदलाव करते। मोर आप जम्मो मन ले आग्रह है कि अपन परिवार मा ये योजना मन के जानकारी खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मन की बात मा अब गोठ एक ऐसन विषय के जिन हजारों बछर जुन्ना है, हजारों बछर ले मानव समाज मा घर करके बैठ गए है। ये विषय है अंधविश्वास के। अंधविश्वास कईयों बारी खाली एक गलत धारणा नहीं होए, वो डर पैदा करते और जब

डर मन म हावी हो जाथे त मनखे सच ल देखना बंद कर देथे। अंधविश्वास म बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज में ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार में वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं होए। और आज मैं ऐसने एक सफल यात्रा के बारे में आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम में एक ठन चिरई पाए जाते। वो चिरई के नाम है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ, एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई में सहायता करते, उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के मन में बैठे गलत धारणा ला बदले के संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन। वो लोगन मन ला विज्ञान के आधार में समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस। जेन चिरई ला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहिस उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ला बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ला हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाते। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन। समाज ल समझाए बर दिन रात काम करिन और अंधविश्वास ल पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाते तो कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सकत हे। संगवारी हो, मैं अक्सर कहिथौं कि जेन खेलथे वो खिलथे। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़त हे जेन मन खिलत घलो हैं और खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज़्यादा युवा मन खेल ला कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो ऐसने प्रयास मन के बारे में जानकारी मिले है जेन बहुते दिलचस्प है। पहली प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ला खचित लगत हो ही, ये बहुते नानुक लैका मन के कोनो साधारण लीग हो ही। फिर ऐसा नहीं है। ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लैका फूल असन लैका मन के एक असाधारण लीग है। और ये लैका मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसन लीग है जेन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ला प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज़्यादा ले ज़्यादा लैका मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग होए रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लैका और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हैं। ये लीग के लैका मन के मन में बहुते अच्छा प्रभाव पड़े है। संगवारी हो, नागालैंड में एक ठन औ बने प्रयास हुआ थे। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सकत है आप मन बर ये फुटसल एक नवा नाव हो ही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ल इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम में खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत हे। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ। ऐसने

प्रयास देश के आने हिस्सा मन ल घलो प्रेरणा देथे। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है, हर दिन नवा शोध होवत है, नवा नवा एआई नवाचार आघू आवत है। ये दौर मा एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आघू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन, ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों बछर जुन्ना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। दू बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय है शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ल फेर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मोला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय है इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग लेवैया करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करूँ कि वो मन ऐसने पहल में विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास होवत है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता और डाटा विज्ञान में बी टेक कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा एआई टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर गाड़ा गाड़ा शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ल दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मन ला एखर कोनो औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले है, फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते हैं। इमें पुरुष सूक्तम श्री रुद्रम दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मन ला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सबो सदस्य मन ला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हूँ। मैं ऐसने सबो लोगन के हृदय ले सराहना करत हूँ जिन भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर मा लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है।

मेघालय जाथे ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रहिथे। फिर मेघालय के एक ठन औ विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात मा आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहनी बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए मा कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मन ला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये और मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कतको अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमार देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज मन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन बखत मा मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असर निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहिस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देखरेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ल मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिल पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सबो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, आप मन कभू ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो ता ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे मा जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखे। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जेन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है औ वो सफाई करही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जेन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहनी मन के बारे में जाने के मौका मिलिस। वो मन अपन तीर तखार मा बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन। ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लाही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए मा करे जात है। राजगढ़ मा पाछू कुछ महीना मा सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गे है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर मा प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए मा योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सबो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ला बधाई देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रहवैया हो।

0: मोला कईयो लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय मा गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े हे। वैसे त गणेश उत्सव मा अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन ह ये आग्रह करे हैं कि ये विषय मा अभिचे बात होना चाहिए। असल मा गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहली शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है, आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें, और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार होए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमर नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते, हमार आस्था घलो बने रही थे और प्रकृति के प्रति हमार दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ल मजबूत करथन। मोला विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव मा और ऐसने हर उत्सव मा हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित मा कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमार देश के सबले बड़का शक्ति हमार देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा मा होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोते। ये प्रयास बताते कि जब मन मा संकल्प हो और समाज के साथ मिले त कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकत है। आप मन अपन तीर तखार मा होवत ऐसन प्रयास मन के बारे मा मोला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकत है आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन और अपन परिवार के ध्यान रखाओ। और हाँ, जल संचय तक करने करना है, बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोरको ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है बरसा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 8 बजे सुन सकते हैं। मीडियम वेव
2: 305.9 FM पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: निर्भर बन रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में तीन युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
5: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान

0: रहा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ रचनाएं। यह है इस कार्यक्रम की पहली पेशकश जावेद।

कार्यक्रम में आप सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले और गाने वाले कलाकार हैं कार्तिक, महालक्ष्मी और अंतरा मित्रा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ए दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ए दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुब्रत सिन्हा का लिखा गीत, कुणाल गंजावाला की आवाज और फिल्म का नाम आंखें।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

लीजिए सुनिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अलग चल रहा है ना? भाई होता है ऐसा, कई बार हम बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन भीतर कोई तूफान हमारे बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक इंसान को अपने स्वरूप को छिपाकर बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। शायद समाज में यही सब चलता है और हम यही तो करते हैं। तो आप में से

बहुत सारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी हमारे चल रही होती है, लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। यही है एक कलाकार की एक विशेषता, एक गुण जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा है कि हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत फिल्माए गए हैं दोस्तों, जहाँ नायक या नायिका होठ नहीं हिलाते बल्कि कुछ गीत उनके अंतर्मन की आवाज या विचारों के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं, है ना। तो ये फिल्मी पर्दे पर फिल्माए हुए गीत नायक या नायिका के मन की उलझनों और भावनाओं को बिना होठ हिलाए व्यक्त कर जाते हैं, और ये गीत किरदार की तन्हाई और आंतरिक पुकार को, उसके दिल के दर्द को, उसकी सोच को पृष्ठभूमि में बहुत खूबसूरती के साथ बयां करते हुए नजर आते हैं, और हमारी आंखें भी भीग जाती हैं, भीगती हैं ना। तो याद कीजिए वो पल जब आपकी आंखें किसी दृश्य को देखकर, किसी गाने को पर्दे पर चलते हुए देखकर भीगी होंगी। हाँ, आज की जो हमारा टेक्स्ट है, आज का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये भी आप जान लें कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो हमारा आज का टेक्स्ट है, बाहर की दुनिया में कदम रखते ही हम एक मुखौटा पहन लेते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे का, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने का, लेकिन उस मुखौटे के पीछे हमारे भीतर एक अनवरत युद्ध चल रहा होता है। भीतरी उथल पुथल और इस वैचारिक तूफान से हम विचलित हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें नायक या नायिका फिल्मी पर्दे पर इन गीतों में होठ हिलाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये गीत उनके अंतर्मन की आवाज या वैचारिक द्वंद्व के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं। तो कौन सी गीत है अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके संदेश देखे हैं, आप लोगों ने दुनिया भर के गीत हमें लिखकर भेज दिए हैं। जी तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सुरीला सफर का, और इस सफर में हम सभी साथ हैं, है ना। तो चलिए फिल्म आंधी का ये गीत याद कीजिए, जहां आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार साहब के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन। पर्दे पर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, कितने अंतर्द्वंद उनके भीतर चल रहे होते हैं, और एक दूसरे को वो कुछ इस अंदाज में बिना कुछ कहे कह रहे होते हैं।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माया नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर

अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है, लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे, लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए। जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छल छला आई हो, या गला रुंध गया हो, या आप रोने से लगे हो, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छल छलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म का नाम था कागज की फूल। एक श्रोता लिखते हैं कि पर्दे पर फिल्म की नायिका वहीदा रहमान वक्त ने किया क्या हजी सितम गाने में हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन और दर्द भरे गानों में से एक है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत समय की क्रूरता, अधूरे प्रेम और पहचान के खो जाने की एक अमर दास्तान है। एक प्रसिद्ध निर्देशक और उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान के बीच के अधूरे प्रेम और अलगाव पर आधारित है ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बज रहे गीत की पार्श्वभूमि में अगर नायक या नायिका लफ्ज हिलाए बगैर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे गीत ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है, आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे हैं उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो जरूर लौटकर आऊंगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है। मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में जरूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्व गीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पार्श्व में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है। मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने छुपकर चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं। जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि 1 बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो 1 घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी फिल्म हाथी मेरे साथी में, जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें। जी, तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म

बाजार से मिर्जा शौक की ये रचना है, और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को। साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है।

ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि संदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खासतौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर में द्वंद्व तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है और अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मनदा के गाए ज्यादातर गीत अंतर मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे ऐसे गीत हैं एसडी बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज है, और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज यानी बर्मन दादा की आवाज। फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए। पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

सचिन देव बर्मन की आवाज थी। फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिंदा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बचते हैं। बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं आपकी लिस्ट में, वो लगभग गीत शामिल हैं। और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं, इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना। और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थीम है आज की। आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफी साहब की आवाज भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरी आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब

दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से जरूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नागेंद्र नाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नजर आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन

कर लेता हूँ, बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत जरूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफर में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सन्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना वो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है, बिल्कुल उनकी आवाज़ तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज़ है ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज़, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे जिंदगी में भावुकता भी जरूरी है, हाँ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला कर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है, तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है, गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नजर रखी आज हमारी जो हमने जो टैक्स दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

आज का ये कार्यक्रम जो है जिस आपकी आवाज में का प्रवाह गंगा नदी के समान है। शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं कि थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है। बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी, तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए, बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आपको यात्रा करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यात्राएं जीवन के अनुभवों के विस्तार के साथ मानव के यानी हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं जीवन को भी एक यात्रा कहा गया है। प्राचीन समय से ही कवि और मनीषी यात्राओं को महत्व देते रहे हैं। यात्रा करना हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है। यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें नई जगहों को देखने के साथ साथ खुद को जानने और समझने का भी मौका देती है।

अब जब आप यात्रा पे निकलने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो कुछ बातों का ख्याल भी रखिए। यानी यात्रा को सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए हमेशा सफर का आसान फार्मूला अपनाएं, यानी कम सामान सफर आसान। यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ के मौसम और घूमने की जगहों की जानकारी जरूर बना लें। ये यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अलग अलग जगहों को, वहाँ के लोगों को और उनकी संस्कृति को करीब से देखने पर हमारी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ता है। यात्रा के दौरान हम अनजाने में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। स्थानीय लोगों को जानना, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना, नई नई भाषाएं सीखना, नई संस्कृतियों से पहचान होना, छोटी मोटी चुनौतियों का खुद सामना करना, इन यात्राओं से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये यात्राएं हमें ऐसे अनुभव और यादें दे जाती हैं जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं।

दोस्तों, यात्रा सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपने साथ जरूरी कागजात, जरूरी दवाइयाँ, मौसम के अनुसार कपड़े और एक पावर बैंक जरूर रखें। घूमने जाने से पहले यात्रा का मार्ग, रुकने की जगह और बजट का खाका तैयार कर लेना चाहिए। पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी जुकाम की दवाइयाँ हमें साथ रख लेनी चाहिए। मूंछ या दर्द के लिए स्प्रे भी रख लेना चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और टिकट का एक अलग ट्रैवल वॉलेट बना लेना चाहिए। सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं आता है, इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने पास पर्याप्त कैश जरूर रखना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हों, जैसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, कहीं भी जा रहे हों, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करें। सफर के दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114

0: पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम

0: है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई, 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत

यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक

0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन की संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब

0: 21 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं इलाही प्यार के, जी हाँ ये है फिल्म का नाम जिसका है 2 गाना। अब आप सुनेंगे स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयाम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया?
3: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत महेश्विन, श्रीनु सुजाता, ग्रीष्मा दीपक, रमेश कनक, लक्ष्मी श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनकी परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और इनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुंडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
2: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
3: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
2: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
3: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
2: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
3: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
2: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
3: अगर मैं मर्द होती
2: तो फिर
3: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
2: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
4: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
2: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको थक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
3: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
4: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
3: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
4: आते ही होंगे।
3: देखो शकुंतला
2: जी,
3: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
2: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
3: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
2: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
3: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
2: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
3: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
4: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: चाय, नारियल का पानी, बताइए
1: कुछ
0: ना।
1: नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
2: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण अगर आप।
1: हाँ, डॉक्टर साहब ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला? तुम जानती हो उसे उमा?
1: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
0: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
1: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
0: तब
1: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
2: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
1: जी हाँ।
0: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
1: कैसी चिट्ठी है?
0: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
1: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
1: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार सामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
1: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
1: अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
1: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
1: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
2: हों। नहीं, ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है, भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
0: अच्छा, बाय बाय।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था।
1: क्या मालूम था तुम्हें?
3: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
1: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
3: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
1: ये भी कम हटीली नहीं है।
3: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
1: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
3: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
1: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
1: फिर
3: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
4: कंपाउंडर
2: जी, अभी आया।
4: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
3: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
4: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजे से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
3: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
1: हेलो।
0: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। बैठिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? सुनाओ। मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
0: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी?

0: सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
1: अच्छा अल्लाबख्श, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, हाँ। मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ। हाँ। जी बहुत अच्छा।
2: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
3: एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
2: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
3: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
2: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
3: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
2: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
3: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा आदि दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
2: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देखें जी कब तक चलेगा।
3: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
2: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
3: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
4: डॉक्टर साहब,
1: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
1: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
5: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
4: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
5: ओ, दवाएं क्या हुई?
4: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
5: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
1: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
5: अच्छा,
1: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
4: ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
1: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात है। बताओ जानम्मा, क्या बात है? कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा? घबराने की क्या बात है, बताओ ना। वो उमा जी के घर
5: में, मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
1: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए। कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
4: डॉक्टर साहब,
1: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो अल्लाह बख्श, उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं। डॉक्टर साहब, कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुत पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
6: आप कौन है? अरे जहनम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
1: डॉक्टर साहब,
7: ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
1: क्या?
7: कुमार स्वामी के घर?
8: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
6: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
8: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
7: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई है। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
6: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
7: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही डॉक्टर साहब, आप थोड़ा

0: खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
1: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है। चलिए आइए, जल्दी चलिए।
2: डॉक्टर साहब।
1: हाँ हाँ, बताइए बच्चा कहाँ है?
3: उस कमरे।
1: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
2: आइए डॉक्टर साहब, इधर से।
1: चलिए।
3: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
1: कंपाउंडर
4: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
3: लो।
4: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
5: कोई भी दवा बेकार है।
2: डॉक्टर साहब,
4: डॉक्टर साहब,
2: नहीं नहीं नहीं।
5: कंपाउंडर
4: जी,
5: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
4: जी,
5: चाय निकले काफी देर हो चुकी है।
3: नहीं,
5: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम
2: जाने। डॉक्टर साहब,
5: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
2: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
6: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
5: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
4: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
5: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
4: चलो
5: चलो।
3: राजा बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आओ? अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए।
4: हाँ, अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।

0: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
0: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए
2: चलिए।
1: भाटी, तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
3: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती,
1: फिर भी एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
3: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी है अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
4: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
1: क्यों, क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
4: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोग स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किवाड़ तोड़ डाली और भीतर
1: गजब हो गया। भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
5: अरे कोई है? राजू,

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डरा दी है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने एन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: सो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो, डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
2: आइए आइए आइए।
3: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
2: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
3: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
4: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
5: डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
4: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
3: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
4: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
3: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
5: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना। हाँ?
4: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
5: जरूर जरूर।
4: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
5: सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।

0: सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है। हाँ।

0: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
1: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
0: क्या?
1: हाँ, पहला हक उसी का था।
0: ये बात तुमने पहले ही क्यों नहीं बताई?
1: क्या लाभ होता इससे?
0: माँ,
1: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
0: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
1: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचे तो गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
0: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
1: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
0: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
1: किस जगह?
0: वो प्रेम की दुनिया में।
1: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था जैसा मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम। क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज़्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकता
1: है। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ, वो
1: तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक

0: होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
0: व्यापक
1: मिला।
0: दृष्टिकोण है ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे।
1: बिल्कुल।
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स है जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए है जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं

0: और वो पूरे 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया, उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे। और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो, वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊँ, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजे में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
0: अरे
1: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे। तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
0: देर से आती थी,
1: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: वाह वाह।
1: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
0: गिर जाते।
1: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे इस तरह से। नहीं, बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था। वहां पर तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
1: हाँ,
0: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है। और कोने कोने में खबर फैल जाती है और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
1: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
0: इतने फोन आने लगे।
1: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर

0: पर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
0: एक्चुअली।
1: करता
0: तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब, जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया। इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है, वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की।
1: जब वो
0: सड़क,
1: बहुत बड़े स्टार
0: बहुत
1: बन चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स

0: पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमेटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते
1: है,
0: थे।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: टू
1: है।
0: थाउजेंड थ्री फोर की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूं मैं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया था?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगांवकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ हाँ
1: था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था, तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी,
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली। लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा, तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: तो
1: बात है।
0: इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गाँव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली, तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था, कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे ये
1: अच्छा,
0: ये ये फिल्म

0: में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी, और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे तो। लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहां भर भी वो जाते थे। राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं।
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी

0: काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहां पर भी वो जाते थे। राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाई कनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं।
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे। तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को, और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं। तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: वाह
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे। तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं
1: वाह वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब तो उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे। और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे। तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके
1: वाह,
0: साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा इसलिए सबको खिलाते थे।
1: हाँ
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता
0: हमेशा
1: था।
0: कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहां बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा
0: हाँ
1: जल्दी आ जाना, सात समंदर
0: हाँ
1: पार से,
0: श्योर
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरो फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर

0: दोस्ती और आगे बढ़ी।
1: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
0: काफी सारी तस्वीरें,
1: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
0: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा नीलू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
1: नाटक करके, जो
0: नाटक
1: जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
0: एग्जैक्टली और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
1: क्या बात, एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा ही।
0: तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से, और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के साथ, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब,
1: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते हैं।
0: हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो पापा ने कहा जरूर क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए, और ये सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स डॉक्टर लागू, नीलू फुले, पापा, तनुजा,
1: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
0: हाँ ये सब लोग वहां पर प्ले तो करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका, और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे।
1: वाओ,
0: झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए, वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
1: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
0: बहुत ही
1: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
0: तो,
1: के हिसाब से।
0: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है, और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की, इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड, और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भाग दौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था, और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, वो बॉम्बे में पापा ने पढ़ा, और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ

0: मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
1: गजब।
0: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए। वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेज करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना
1: क्या
0: चाहिए,
1: बात है।
0: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय तक, लेट रिलीज होती थी। उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा
1: बाप
0: किया
1: रे
0: गया
1: बाप,
0: फॉर द म्यूजियम,
1: म्यूजियम।
0: और ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज़ को देना चाहिए। तो हम अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताज़ी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं। और हमेशा मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो CM साहब को फ़ोन लगा लिया, दिल्ली में फ़ोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात यह लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप
1: कि ये
0: अभी
1: क्यों कर
0: इन्हें
1: रहे
0: क्यों
1: हो।
0: दे रहे हो, 10,000 रुपये इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य, जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी, वो बिल्कुल एक जैसी थी। और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट
1: क्या
0: कि
1: बात,
0: इस घर में मैं
1: बिल्कुल।
0: पैदा हूं।
1: चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहां मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी
0: करेक्ट
1: लगता है। वो
0: करेक्ट।
1: बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं। मैंने कहा क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है ऐसे, क्या मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सब के लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट। मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो, मम्मी ने कहा अभी नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ।
1: लो।
0: तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी, तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय, 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था, तो

0: दस ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है। बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे, वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली। तो पापा, कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूँ मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है, जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमिजिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है वगैरह। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज़ कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का बुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो जो है वो बात वो मुंह पर कह के ये हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इसको दिखाया, देखो हम पर ये क्या हो रहा है, इस तरह से उनका चल रहा था। वो किस्सा इस तरह से कुछ हुआ
1: और
0: था।
1: किसानों के प्रति उनका जो सरोकार था वो यहां नजर आता है।
0: हाँ, और क्योंकि मेरी दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी, पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे, इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको
0: ये
1: पता
0: उन्हें
1: था
0: बहुत करीब से देखी हुई थी। तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था अंदर से।
1: बिल्कुल। यहां एक गाना सुनते हैं,
0: श्योर।
1: दो आंखें 12 हाथ का, ए
0: हाँ,
1: मालिक तेरे बंदे
0: ऑफ
1: हम।
0: कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं एक सा मुकद्दर है, मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में। आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा, सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने
1: आपके हसीन रुख

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू, दिल भी खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्सा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुअन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसक।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आँखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आँखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आँखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से, और आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है हिंदी में समाचार, हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि

0: भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडिया विजन फॉर द इंडियन ओशन। टूडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने प्राइमरी चैनल से रिले करते हैं।
3: जिले की चिट्ठी में सुनिए जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है तरुण प्रकाश शर्मा का।
4: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं जशपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर, बैनर, मुनादी

0: प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण, बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का स्थान लेगी। श्रोताओं, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज जशपुर जिले में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दवा पिलाने के लिए जिले में 1200 से अधिक बूथ बनाए गए थे। जो बच्चे आज दवा पीने से छूट गए उन्हें कल और परसों यानी 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत जिले में 1,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रोताओं, जशपुर जिला अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जशपुर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। यह रेल नेटवर्क रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक विकसित होगी। इससे किसानों, व्यापारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 20 जून को जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में आयोजित जैविक किसान मेला और प्राकृतिक तथा जैविक खेती कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। श्री साय ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल चयन, प्राकृतिक और जैविक खेती तथा मजबूत बाजार व्यवस्था से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। अपने जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बगिया से जश लर्न कार्यक्रम का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जश लर्न कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकास खंडों तक विस्तारित किया जाएगा। जशपुर पुलिस ने 24 जून को जिले के सभी 766 गांव में एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इन गांवों में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। श्रोताओं, जशपुर वनमंडल ने 19 जून को एक ही दिन में 2,00,000 से अधिक सीड बॉल के प्रसार और रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में वनमंडल को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो अभियान में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इस अभियान का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि करना है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत जिले में 11 बसें चलाई जा रही हैं, जिससे दूरस्थ गांव में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। इन बसों का संचालन कैलाश गुफा से बगीचा, सन्ना से चंपा, रनपुर से कांसाबेल, दोकड़ा से दुलदुला, जशपुर से हर्री, पत्थल गांव से नारायणपुर, दुलदुला से अबीरा जैसे विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे जशपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था तरुण प्रकाश शर्मा का। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम मा प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध मा वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा घलो सुनेगीस। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर मा 0 से 5 बछर तक के लयिका मन ला पोलियो के दवाई पिलाई गीस। औ मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग मा 1-2 जगह मा मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे हे। अब समाचार विस्तार ले।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ कहीन हे कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन मा ध्यान केंद्रित करत हुए भारत समुद्र ले लेके आकाश तक ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत हे। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम मा श्री मोदी आ कहीन हे कि जून महीना मा स्वदेशी C-295 विमान के पहली उड़ान के संग ही भारत हा विमान क्षेत्र मा एक बड़का सफलता हासिल करे हे। श्री मोदी आ कहीन हे कि इही महीना कोलकाता मा 3 युद्ध पोत के जलावतरण करेगी और DRDO हा लंबा दूरी के क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण करे हे। प्रधानमंत्री हा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चर्चा करीन जेला दुनिया भर मा मनाएगीस। ए बार ए आयोजन 2,500 ले ज्यादा जगह मा होइस। भारत मा करोड़ों लोगन मन हा योग दिवस मा भागीदारी दिन। श्री मोदी हा अहमदाबाद मा विश्व योगासन चैंपियनशिप मा पदक विजेता एथलीट ला बधाई दिन। प्रधानमंत्री हा पश्चिम एशिया मा युद्ध के दौरान उखर अपील मा देशवासी मन के समर्थन और सहयोग बर आभार जताइन। प्रधानमंत्री हा देशवासी मन ले जल संरक्षण के संबंध में कहीन कि वर्षा जल के एक एक बूंद ला बचाए जाना चाहिए। उन्होंने कहीन कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह मा सुनेगीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय मा जनप्रतिनिधि और मनखे मन संग एक कार्यक्रम ला सुनीस। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहीन कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद के सशक्त माध्यम बन चुके है। प्रधानमंत्री के विचार देशवासी मन ला प्रेरित करे के संगे संग समाज मा सकारात्मक परिवर्तन के रद्दा घलो प्रशस्त करत है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 बछर तक के लईका मन ला पोलियो के दवाई पिलाएगीस। आज जउन लईका मन दवाई पिए ले छूट गए है उमन काली और परन दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। ए अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 ले ज्यादा लईका मन ला पोलियो की खुराक पिलाए के लक्ष्य राखे गए है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा प्रदेशवासी मन ले अपील करे है कि ओमन अपन 0 से 5 बछर तक के हर एक लईका मल्ला पोलियो के 2 बूंद दवाई जरूर पिलाए। सिसाय हा अपन संदेश मा कहीन कि ए दवाई नहीं लईका मन के स्वस्थ सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के सुरक्षा के संकल्प है। ओमन हा सबो मनखे मन ले आग्रह करे है कि ओमन तीर तखार घलो ए सुनिश्चित करे कि कोनो भी लईका पल्स पोलियो के 2 बूंद ले छूटे झन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण ला साकार करे मा गांव के मुख्य भूमिका के उल्लेख करीन। नई दिल्ली मा राष्ट्रीय ग्राम विकास सम्मेलन मा श्री चौहान हा कहीन कि राष्ट्रीय विकास मा तेजी लाए बर विकसित भारत ग्रामीण योजना मा अवैया राज्य मन के योगदान के संग 1,51,000 करोड़ रूपया ले ज्यादा के प्रावधान करे गे है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बछर पूरा होए मा छत्तीसगढ़ मा काली 29 जून ले सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। 6 जुलाई तक चलैया इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर मा सहकारिता ला बढ़ावा देबर आने आने कार्यक्रम आयोजित होही। रायपुर मा अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। एमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप मा शामिल होही। सहकार मेला मा सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल के प्रदर्शन करे जाही। 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डाले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण के काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा काली 29 जून के नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वां बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर परिचारणगत दिशा निर्देश जारी करही। ए शुभारंभ एनीमिया मुक्त भारत ले एनीमिया मुक्त भारत अभियान में परिवर्तित होए के कारण एनीमिया के विरुद्ध देश के लड़ाई में एक जरूरी मील के पत्थर साबित होही। ए अभियान में हीमोग्लोबिन परीक्षण आयरन अल्पता एनीमिया के प्रोटोकॉल आधार उपचार व्यवस्थित फॉलोअप और लाभार्थी के संदर्भ देना और स्वास्थ्य आहार संबंधी आदत पर केंद्रीय परामर्श देना शामिल है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बो बाचे समाचार गोती पंडित दीनदयाल।

0: प्रशिक्षण अभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम ला लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के वर्चुअल बैठक हुई। ए बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुई। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहिन है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण ले न केवल कार्यकर्ता के बल्कि जनप्रतिनिधि मन के घलो डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बाढ़ी। बैठक ला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय घलो संबोधित करीन। उन्हें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रदेश प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही बैठक में ए अभियान के विस्तृत रूपरेखा और उद्देश्य के जानकारी साझा करीन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पेंशनर के हित में बड़का फैसला सुनात हुए छठवां और सातवां वेतन आयोग ले जुड़े 59 महीना के बकाया एरियर्स के भुगतान के रद्दा साफ कर दे है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल के खंडपीठ राज्य सरकार के रीट अपील खारिज करत हुए एकल पीठ के आदेश ला बरकरार राखी। अदालत था कि इनकी दो राज्य के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति के अभाव पेंशनर के वैध अधिकार ला प्रभावित नहीं कर सके। सरगुजा जिला के रामगढ़ में काली 29 जून ले दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव के आयोजन करे जाही। महोत्सव के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। महोत्सव के पहली दिन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित आने आने लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत करे जाही। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसा में 3 लोगों के मौत मौका माही होगी। जानवा के मुताबिक बलौदा थाना क्षेत्र में अवैया भारतमाला रद्दा में मॉर्निंग वॉक में निकले 3 लोगों मल्ला अज्ञात वाहन अपन चपेट में ले लीस। मृतक में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव के रवैया रहीस। हादसा के बाद चालक फरार होगी। उन्हें शक्ति जिला के भेड़ीकोना गांव में चारपहिया वाहन मोटरसाइकिल सवार युवक मल्ला टक्कर मार दीस। ए हादसा में 1 युवक के मौत होगी। उन्हें 1 आने युवक घायल होगी। इस बीच बेमेतरा के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्चा दीवार के ढह जाए ले 2 बहिनी के मौत होगी। उन्हें 1 माई लोगिन घायल होगी। जानवा के अनुसार दोनों लड़का घर के आंगन में बैठे रही, इसी दौरान दीवार भरभरा के गिर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डहारले हाल ही में पद्मश्री ले सम्मानित दंतेवाड़ा के समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती के आकाशवाणी डहारले ले गए साक्षात्कार काली 29 जून के प्रसारित करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र डहारले प्रसारित करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक बस्तर संभाग में 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे। उन्हें कुछ जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे की संभावना जता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि आज ले अवैया 7 दिन तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ी। उन्हें उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा वर्षा की संभावना है। इस बीच आज बस्तर के संग प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवा के संग जमके बरसा हुई। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन करैया 7 जुलाई ले करे जा सकत है। ए योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित छात्र मनला हर महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशवासी मन ले जन संरक्षण के संबंध में वर्षा जल के एक एक बूंदला बचाए के करीन अपील। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आने आने जगह में घलो सुनेगी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शून्य ले 5 बछर तक के लईका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाएगी। और मौसम विभाग वैया 3 दिन तक बस्तर संभाग में 1-2 जगह में मध्यम ले भारी वर्षा होए के चेतावनी दे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जुहार।
1: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:20 हुए। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।
2: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
3: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
4: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी

0: जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
2: काहे सिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू?
1: तहू यार,
3: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
0: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म आपकी कसम का गीत। बोल आनंद बख्शी की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
4: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
3: तहू यार,
5: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
6: लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम पर्वत का गीत। जहाँ निसार अख्तर के गीत को संगीत से सजाया है जयदेव ने।

आग गले लग जा। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेडाल का, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

चित्रपट संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म छैला बाबू का गीत। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:48 में लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा, अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर सुना गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

0: मंत्री ने कहा कि मन की बात आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है।
1: मन की बात का 135वां एपिसोड मुख्यमंत्री निवास में हम सभी लोगों ने सुना है। एक तो आज एक नई जानकारी मिली है कि रूट ब्रिज मतलब पेड़ों के जो जड़ होते हैं उसको संग्रह करके उसको विशेष प्रयास करके ब्रिज बनाने का काम भी देश में चल रहा है। ये सब अद्भुत चीज प्रधानमंत्री जी की मन की बात के द्वारा पूरे देशवासियों को पता चलता है तो बड़ा ही उपयोगी रहता है।
0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आज जो बच्चे दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें कल और परसों स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश ने अभियान के शुरुआती 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72% पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ये अभियान आगामी 15 जुलाई तक चलेगा। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सभी हितग्राहियों को बधाई दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल 29 जून से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। 6 जुलाई तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानकारी मिलेगी।
1: प्रदेश भर के जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको सम्मान करने का और आपातकाल को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन संघ के द्वारा किया गया था जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए थे और इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को आपातकाल के विषय में जानकारी होगी। बहुत बड़ा अन्याय आपातकाल के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने किया था।
0: पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की वर्चुअल बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण से न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी डिजिटल और तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। श्री साय ने कहा कि इसके माध्यम से बूथ स्तर तक के नए और युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास और कार्यप्रणाली की सटीक जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला

0: बनाते हुए छठवें और सातवें वेतन आयोग से जुड़े 59 महीने के बकाया एरियर्स के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि दो राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय या सहमति का अभाव पेंशनरों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दंतेवाड़ा की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती का आकाशवाणी द्वारा लिया गया साक्षात्कार कल 29 जून को प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में कल 29 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोरबी में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला मार्ग पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में 2 डोंगरी और 1 कोरबी गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वहीं सक्ती जिले के भेड़ीकोना गांव में 4-पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 1 अन्य युवक घायल हो गया है। इस बीच बेमेतरा जिले के ग्राम राउरपुर में अचानक कच्ची दीवार के ढह जाने से 2 बहनों की मौत हो गई, वहीं 1 महिला घायल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां घर के आंगन में बैठी थी, इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
1: दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर मध्य से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके साथ साथ उत्तर छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा संभाग में भी काफी अच्छा बारिश होने की संभावना है। आज से लेके आगामी 7 दिन तक भी वर्षा का गतिविधि में थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेके मध्य वर्षा होने की चांसेस है। बस्तर संभाग में आज से लेके आगामी 3 दिन तक 1-2 स्थानों पर मध्य से लेके भारी वर्षा होने की चांसेस है।
0: इस बीच आज बस्तर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। जगदलपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आगामी 7 जुलाई किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण करने और कैच द रेन अभियान में भागीदारी की अपील की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ, जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेरे पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है, हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब के लुधियाना शहर के शिरदिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमा

मशीन गन से भारी तादाद में निकलती गोलियों ने कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोल दिया। उधर से दुश्मन सेना के तेज होते कबायली हमले और इधर सिख रेजिमेंट की डी कंपनी के धाकड़ जवान जिनके कदमों की आहट ने उरी की वादियों में हलचल मचा दी। शत्रु लगातार भारतीय सेना का निशाना बनते रहे और उनके कई बंकरों, असलाहों, राइफल्स, मशीन गन्स और गोला बारूद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हमले की जद में आ रहे कई दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। दोनों ओर से होती घमासान जंग में दुश्मनों के हौसले पस्त थे, क्योंकि बिशन सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी को हर दिशा से धावा बोलने का एक अचूक मंत्र दिया। वो स्वयं बाई तरफ से हमला बोलते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे और इस अफरा तफरी के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मशीन गन और फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के 5 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की ही भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े। जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी LMG बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गई। उनकी सांसें थमने लगी। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतेह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीने हिंद का ये बांका सिपाही मां भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मा

इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों, उन्हें भला दुश्मन कब मार

फौजी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को नेस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8:30 आठ बजने को है। अब आप सुनेंगे हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे प्राइमरी चैनल से।
1: 8 बजने को है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
7: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप सबो मन ले जुरिया के मुला अब्बड़ आनंद होवत हे। 2026 के आधा बछर पहावत हे। ये 6 महीना मा हमन मन की बात मा देशवासी मन के अनेक उपलब्धि मन के चर्चा करे हन। जून मा घलो देश ह कुछ ऐसने उपलब्धि प्राप्त करे हे जेन हर देशवासी ल गर्व ले भर देथे। ये सफलता मन देश के सुरक्षा औ आत्मनिर्भरता ले जुड़े हैं। हालिच मा मुला कोलकाता मा नौसेना ले जुड़े एक ठन कार्यक्रम मा सम्मिलित होए के मौका मिलिस। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक औ INS अग्रय ल भारतीय नौसेना के बेड़ा मा सम्मिलित करे गईस। ये जहाज मन के डिजाइन और उत्पादन तको सबो कुछ स्वदेशी हे। संगवारी हो, जूनेज के महीना मा विमानन क्षेत्र मा घलो देश एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान हा अपन पहली उड़ान पूरा करे है और ऐसने 40 विमान भारत में बनाए जात हैं। एखर ले MSME और अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार के अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर

भारत के संकल्प घलो मजबूत होवत हे। इही महीना DRDO ह स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के घलो सफल परीक्षण करे हे। एला DRDO के प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग हिस्सेदार मन मिल के बनाए हैं। माने आज समुद्र ले लेके आगाज तक हमार भारत ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगवारी हो, जून मा एक ठन औ आयोजन होइस जेमे जम्मो दुनिया भारत के प्रयास ले जुड़ीस और ये कार्यक्रम रहीस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये पैत दुनिया के 2500 ले ज्यादा ठियामा योग के अनेक विविध कार्यक्रम होइस। हमार देश मा करोड़ों लोगन मन ठिया ठिया मा योग कार्यक्रम मन मा हिस्सा लेन। ये महीना अहमदाबाद मा आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप के घलो बड़ चर्चा होइस। एमे भारत ह कुल 114 पदक जीते हे। एमाले 102 स्वर्ण पदक घलो सम्मिलित हे। भारत ये प्रतियोगिता के पदक तालिका मा पहली स्थान मा रहिस। मैं सबो विजेता खिलाड़ी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, कोनो भी राष्ट्र के आत्मा ओखर मनखे मन होते और जब वो देश के लोगन मन कोनो संकल्प लेते तक कोनो भी शक्ति वो मन ला अपन लक्ष्य ले नहीं डिगा पाए। राष्ट्र निर्माण मा जन भागीदारी के ये ताकत भारत के बहुते बड़का पूंजी है और ये जन भागीदारी के हम बार बार अनुभव करत हन। संगवारी हो, पश्चिम एशिया में बने युद्ध के स्थिति ला देखत मैं देशवासी मन ले कुछ आग्रह करे रहे हूँ। मैं कह रहे हूँ कि जहाँ तक संभव हो कुछ बखत खातिर गोल्ड सोना बिसाए ले बाँचें। लोगन मन ले कह रहे हूँ कि विदेश में छुट्टी मनाए ले बाँचें। मैं लोगन मन ले कार के सामूहिक उपयोग ला घलो बढ़ावा दे के अपील करे रहे हूँ। मैं किसान मन ले रसायन मुक्त खेती बर खेत बचाए खातिर और प्राकृतिक खाद के ज्यादा ले ज्यादा उपयोग के आग्रह करे रहे हूँ। संगवारी हो, मैं देश के हर नागरिक के आभारी हूँ कि मोर अपील के वो मन न सिर्फ समर्थन करिन भलुक हर कोती ले ओमे अपन सहयोग करत हैं। मुला कईयों परिवार मन संदेशा भेज के अपन अनुभव साझा करे हैं। कतकोन परिवार मन ये तय करे हैं कि घर के बिहाव मा ये पैत सोना नहीं बिसाही, जरूरत पड़ी तब पुराना सोना ला रिसाइकिल करके नवा गहना बनवा लेही। कतकोन लोगन मन सोशल मीडिया मा ये घलो लिखे हैं कि कैसे वो मन ये पैत विदेश यात्रा ला टाल दे हैं। संगवारी हो, कार के सामूहिक उपयोग ला लेके घलो लोगन मन अनेक अनुभव साझा करे हैं। जेन लोगन मन हर दिन एके दिशा मा अपन अपन वाहन ले जाते वो मन अब एक साथ जाए लगे हैं। लोगन मन हर संभव बस और मेट्रो के उपयोग करत हैं। एखर ले पेट्रोल और डीजल के बचत होवत हे। इही रकम देश के आने आने हिस्सा मा प्राकृतिक खाद के खपत बढ़े के घलो खबर आवत हे। संगवारी हो, मोला ये बात के खुशी है, ये वैश्विक आपदा के हम भारतीय मिल के मुकाबला करत हन। मोला विश्वास है जन भागीदारी के ये शक्ति हमन ला मजबूती देही, हमन ला सफल बनाही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हमार देश मा जन्मदिन बर बिहाव पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे संग जम्मो समाज के उत्सव घलो होते। हर परिवार चाहते कि ओखर खुशी मन आने मन संग घलो साझा होवे। लोगन मन पहुना मन ला उपहार घलो देते। संगवारी हो, महाराष्ट्र के नांदेड़ मा एक परिवार ह अपन खुशी बांटे बर ऐसन काम करीस जेन चर्चा के विषय बन गए हे। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव मा पेठ कर परिवार रहते। ये परिवार ह सोचिस कि अगर खुशी बांटना है ता ऐसन जिनिस दिए जाए
जिन मुश्किल बखत में कोनो परिवार के सहारा बने। अपन घर में बिहाव के मौका में ये परिवार ह गांव के लगभग 3,500 लोगन मन बर दुर्घटना बीमा के व्यवस्था करिस। हर मनखे ला 1,00,000 रुपया के बीमा कवर दिए गईस। ये पहल के पाछू के भावना बहुते स्पर्श करने वाला है। परिवार ह देखे रहिस कि दुर्घटना के बाद परिवार मन ला आर्थिक कठिनाई के सामना करना पड़ते। ऐसे बखत मा एक ठन नानुक सहायता घलो बहुते बड़का संबल बन जाते। संगवारी हो, सरकार देश के करोड़ों परिवार तक सुरक्षा के कवच पहुंचावत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाली 20 रुपया के सालाना प्रीमियम, माने खाली एक बछर के 20 रुपया के प्रीमियम, ओखर ऊपर 2,00,000 रुपया तक के दुर्घटना बीमा मिलते। अब तक ये योजना ले 58 करोड़ ले ज्यादा लोगन मन जुड़ चुके हैं। एमा करीबन 28 करोड़ हमार दाई बहनी बेटी मन हैं, माई लोगिन मन हैं। ये योजना ले पीड़ित परिवार ला अब तक जिन हिसाब मिले हैं 3,700 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सहायता मिल चुके हैं। संगवारी हो, यही रकम ले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना घलो उत्केच महत्तम के है। ये योजना मनखे के दुखद मौत होए मा ओखर परिवार ल 2,00,000 रुपया के बीमा कवर देते। एखर सालाना प्रीमियम खाली 436 रुपया है, माने एक दिन के बड़ मुश्किल 1.5 रुपया। ये योजना ले अब तक 27 करोड़ ले ज्यादा मनखे मन जुड़े हैं। एखर अंतर्गत देश के करीबन 11,00,000 परिवार ल करीबन 22,000 करोड़ रुपया के सहायता मिल चुके हैं। ये आंकड़ा बहुते बड़ा है। ये आंकड़ा मन के पीछे लाखों परिवार मन के अपन अपन कहानी है। कहूँ कोनो दाई ल लइका मन के पढ़ाई चालू रखे मा सहायता मिलीस, कहूँ कोनो पत्नी ल घर के जिम्मेवारी संभाले मा सहारा मिलीस। संगवारी हो, कईयो घाव बहुते बड़का सुरक्षा के शुरुआत बहुते छोटे राशि और एक नानुक कदम ले हो सकत है। नानकुन निर्णय घलो बहुते बड़का बदलाव करते। मोर आप जम्मो मन ले आग्रह है कि अपन परिवार मा ये योजना मन के जानकारी खचित साझा करो। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मन की बात मा अब गोठ एक ऐसन विषय के जिन हजारों बछर जुन्ना है, हजारों बछर ले मानव समाज मा घर करके बैठ गए है। ये विषय है अंधविश्वास के। अंधविश्वास कईयों बारी खाली एक गलत धारणा नहीं होए, वो डर पैदा करते। और जब डर मन मा हावी हो जाते तब मनखे सच ला देखना बंद कर देते। अंधविश्वास में बूढ़े लोगन मन फिर बिना तर्क के बिना सच जाने ऐसन फैसला ले लगते जेखर बड़ा नुकसान होते। उन्हें समाज में ऐसे लोगन घलो होते जिन विज्ञान अनुभव और तर्क के आधार में वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास ले विश्वास तक के ये यात्रा आसान नहीं होए। और आज मैं ऐसने एक सफल यात्रा के बारे में आप मन ला खचित बताना चाहत हूँ। संगवारी हो, असम में एक ठन चिरई पाए जाते। वो चिरई के नाव है हर गिला। हर गिला एक दुर्लभ चिरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे मा महत्तम के भूमिका निभाते। फिर असम के कुछ क्षेत्र मन मा लंबा बखत तक इला अशुभ माने जात रहिस। लोगन मन इला अपन तीर तखार मा देखना पसंद नहीं करत रहिन। कईयो घाव वो पेड़ मन ला घलो काट दिए जात रहिस जेमे हरगिला के घोसला बने होत रहिस। सोचाओ, एक ऐसन चिरई जिन पर्यावरण के सफाई मा सहायता करते, उही हरगिला लोगन मन के डर के शिकार बन गए रहिस। इही दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हा ये सब देखिन। वो लोगन के
मन मा बैठे गलत धारणा ला बदले के

संकल्प लेन। वो माई लोगिन मन ले गोट करिन, वो लोगन मन ल विज्ञान के आधार में समझाइन। धीरे धीरे माई लोगिन मन ये अभियान ले जुड़े लगिन। फिर एक बड़का बदलाव शुरू हुईस, जेन चिरैला कभू अशुभ मान के भगाए जात रहीस, उही गांव के चिन्हारी बने लगिस। हजारों ग्रामीण माई लोगिन मन हर गिला ल बचाए बर आघू आइन। आज वो मन ल हर गिला आर्मी के नाव ले जाने जाते। ये माई लोगिन मन समाज के संग संघर्ष घलो करिन, समाज ल समझाए बर दिन रात काम करिन, औ अंधविश्वास ल पाछू छोड़ करके रहिन। वो मन दिखाइन कि जब सही जानकारी पहुँचाए जाते त कईयों बछर जुन्ना सोच घलो बदल सकत हे। संगवारी हो, मैं अक्सर कहिथौं कि जेन खेल थे वो खिल थे। आज देश में ऐसन युवा मन के संख्या बहुत तेजी ले बढ़ा थे, जेन मन खिलत घलो हैं औ खिलत घलो हैं। पाछू के तुलना में अब कहूँ ज़्यादा युवा मन खेल ल कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मुला नागालैंड के दो ऐसने प्रयास मन के बारे में जानकारी मिले है, जेन बहुते दिलचस्प है। पहली प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाव सुन के आप मन ल खचित लगत हो ही, ये बहुते नानुक लैका मन के कोनो साधारण लीग हो ही। फिर ऐसा नहीं है, ये 5 ले 10-12 बछर के उम्र के नान नान लैका, फूल असन लैका मन के एक असाधारण लीग है। और ये लैका मन के फुटबॉल खिलाड़ी मन के एक ऐसन लीग है, जेन उनकर गतिला और प्रतिभा खातिर वो मन ल प्रेरित घलो करते और उनकर पहचान घलो बनाते। एकर शुरुआत नागालैंड के ज्यादा ले ज्यादा लैका मन ले फुटबॉल ले जोड़े के संग होए रहिस। 5 ले 12 बछर तक के लैका और नोनी मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 बछर पूरा कर चुके हैं। ये लीग के लैका मन के मन में बहुते अच्छा प्रभाव पड़े है। संगवारी हो, नागालैंड में एक ठन औ बने प्रयास होवत है। ओखर नाव है नागालैंड वुमन फुटसल लीग। हो सकत है आप मन बर ये फुटसल एक नवा नाव हो ही। मैं आप मन ला बतावत हूँ कि फुटसल ल इंडोर फुटबॉल घलो कहे जाते। एमे एक टीम में खाली 5 खिलाड़ी होते। खेल के मैदान घलो फुटबॉल के मैदान ले बहुत छोटे होते। यही कारण खिलाड़ी मन ला तेज फैसला करना होते। वो मन ला अपन तकनीक और कौशल के बेहतर उपयोग करना पड़ते। नागालैंड के महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए के बने अवसर देवत है। मैं ऐसन पहल खातिर नागालैंड के लोगन मन के सराहना करत हूँ। ऐसने प्रयास देश के आने हिस्सा मन ला घलो प्रेरणा देते। संगवारी हो, ये तकनीकी के युग है। हर दिन नवा शोध होवत है, नवा नवा AI नवाचार आघू आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुते महत्वपूर्ण है, लोगन मन के रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखे जाए। नवा तकनीक के संग आघू बढ़त हम अपन जड़ ले कैसे जुड़े रहन, ये सवाल के समाधान खोजे है नालंदा विश्वविद्यालय है। हजारों बछर जुन्ना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार के रूप में भारत के भाग्य गढ़त है। 2 बछर पाछू मोला नालंदा विश्वविद्यालय के नवा परिसर के लोकार्पण के अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय है शास्त्रार्थ के हमर जुन्ना परंपरा ल फेर जीवंत करे है। शास्त्रार्थ खाली अपन बात रखे के माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन के एक अनुशासित प्रक्रिया है। एमे तर्क के संग तथ्य के संग अपन बात कहना बहुते जरूरी होते और ओमे आप मन के महारत होना चाहिए। आने मन के विचार ल धैर्य ले सुने और समझे के सीख घलो ये शास्त्रार्थ के प्रक्रिया ले मिलते। मुला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय है इला अपन दीक्षांत समारोह के हिस्सा बनाइस। एमे भाग ले

या करीबन आधा विद्यार्थी मन आने देश ले आए रहिन। एक जुन्ना परंपरा ला आज के बखत ले जोड़े के ये प्रयास बहुते सराहनीय है। मैं एखर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। मैं देश के आने विश्वविद्यालय मन ले घलो आग्रह करूँ कि वो मन ऐसने पहल में विचार करें। संगवारी हो, जड़ मन ले जुड़े रही के युवा मन ला नवा तकनीकी बर तैयार करे के एक ठन औ बने प्रयास होवत है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम विद्वता औ डाटा विज्ञान में बी टेक कार्यक्रम शुरू करैया है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत के पारंपरिक ज्ञान ले जोड़े के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एखर ले भारतीय भाखा बनबर नवा एआई टूल तैयार करे मा सहायता मिली। हमर जुन्ना ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे के काम ला घलो नवा गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ला ये प्रयास खातिर गाड़ा गाड़ा शुभकामना देवत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के आने आने हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत संगीत और अध्यात्म ला दुनिया भर के लोगन मन जानत हैं और अपनावत हैं। भारत ले हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाव के एक देश है। वहाँ भारतीय मन के संख्या करीबन 100 है, शायद एखर ले घलो कम हो ही। एखर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ले जुड़े एक बहुते अच्छा प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोगन मन एक टीम बनाए हैं। ये टीम के नाव हैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना। टीम के सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य के अध्ययन करत हैं। वो मन वैदिक मंत्र मन के उच्चारण घलो सीखत हैं। वो मन ला एखर कोनो औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिले है, फिर वो मन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र मन के सही उच्चारण सीखे हैं। आज वो मन कईयों मंत्र के बहुते अच्छा जाप कर लेते हैं। इमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मयम सम्मिलित है। भारत ले अतका दूर रही के हमर परंपरा मन ला सीखे के उनखर ये प्रयास बहुते प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमेनिकाना वहाँ के सबो सदस्य मन ला उनखर प्रयास खातिर शुभकामना देवत हूँ। मैं ऐसने सबो लोगन के हृदय ले सराहना करत हूँ जिन भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए खातिर सरलग प्रयास करत हैं। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मेघालय के चिन्हारी बादल मन ले है, सुंदर दृश्य मन ले है। जेन मेघालय जाते ओला उहां के लोगन मन के अपनापन घलो लंबा बखत तक सुरता रही थे। फिर मेघालय के एक ठन औ विशेषता है जेखर मैं आज मन की बात में आप मन ले चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मन के कहनी बहुते रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने, इला तैयार होए में कईयों दशक लगते। रबर के पेड़ के जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा दे जाते। ये जड़ मन ला जलधारा मन के पार ले जाए जाते। बखत के संग उही जड़ एक मजबूत ब्रिज के रूप ले लेते। ये ब्रिज मन के एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज हैं। बखत बीते के संग ये और मजबूत हो जाते। एमे मेघालय के लोगन मन के सृजनशीलता दिखाई देते। इनखर पाछू कईयों बछर के धैर्य और प्रकृति के प्रति गहिर सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनखे प्रकृति के संग मिलके कत को अद्भुत जिनिस बना सकत हैं। ये हमारे देश के, ये धरती के धरोहर हैं। अब भारत हा मेघालय के रूट ब्रिज मनला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क मा शामिल कराए बर आवेदन करे है। संगवारी हो, ऋतु परिवर्तन के कारण ये रूट ब्रिज मन के आघू कईयों चुनौती घलो आते। ऐसन

वक्त में मेघालय के लोगन मन ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के जिम्मेदारी घलो बने असर निभाए हैं। पहली ये पता लगाना घलो आसान नहीं रहीस कि ऐसन ब्रिज मन के संख्या कतका है। स्थानीय लोगन मन खुदे एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन के देखभाल के जिम्मेदारी घलो संभालिन। आज स्थानीय लोगन मन 120 ले ज्यादा रूट ब्रिज मन के देख रेख करत हैं। कुछ टीम मन हर बछर ये पुल मन के स्थिति के जांच करते। कुछ लोगन मन ह तीर तखार के क्षेत्र ल मजबूत बनाए खातिर नर्सरी घलो तैयार करे हैं। ये रकम के उनखर संरक्षण खातिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गए है। आप मन देखे हो ये बछर हेलीवार जिला पद्म पुरस्कार ले सम्मानित करे गए है। वो मन अपन जिंदगी के 50 ले ज्यादा बछर ये रूट ब्रिज मन के देखभाल में लगाए हैं। उनखर समर्पण हम सबो मन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, आप मन कभू ये रूट ब्रिज के यात्रा करे हो ता ओखर फोटो सोशल मीडिया मा खचित साझा करो। आप मन के फोटो आने लोगन मन ला घलो मेघालय के ये अनोखा धरोहर के बारे में जाने खातिर प्रेरित करही। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, हम सबो मन चाहथन कि हमार गांव साफ सुथरा होवे, हमार शहर सुंदर दिखे। फिर शायदे कभू रुक के ये सोचे जाते कि हमार तीर तखार मा जेन कचरा जमे होते ओला कौन साफ करते। ज्यादातर लोगन मन तो यही मान के चलते कि ये कोनो औ के जिम्मेदारी है औ वो सफाई करही। फिर हमार बीच कुछ ऐसन लोगन घलो होते जेन अपन सोच ले हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के ब्यावरा के कुछ बहनी मन के बारे में जाने के मौका मिलेस। वो मन अपन तीर तखार में बगरे प्लास्टिक कचरा ला हटाए के संकल्प लेन। ये नहीं सोचिन कि कोनो आ के बदलाव लाही। वो मन खुदे शहर भर ले प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल इकट्ठा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ल इको ब्रिक्स में बदले जाए लगिस। आज उही इको ब्रिक्स के उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ल सुंदर बनाए में करे जात है। राजगढ़ में पाछू कुछ महीना में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ल रिसाइकिल करके ओखर बेहतर उपयोग करे गए है। माने जेन प्लास्टिक पहली शहर में प्रदूषण फैलावत रहीस, आज उही ये बहनी मन के प्रयास ले शहर के सुंदरता बढ़ाए में योगदान देवत है। मैं व्यावरा के सबो बहनी और ये अभियान ले जुड़े संगवारी मन ला बधाई देवत हूँ। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, मोला कईयों लोगन मन पाती लिख के एक खास विषय में गोट करे के सुझाव भेजे हैं। ये विषय गणेश उत्सव ले जुड़े है। वैसे त गणेश उत्सव में अभी बने बखत बाकी है, फिर लोगन मन ह ये आग्रह करे हैं कि ये विषय में अभिचे बात होना चाहिए। असल में गणेश जी के मूर्ति बनाए के काम बहुत पहली शुरू हो जाते। मूर्ति बनाए वाला मूर्ति के व्यापार ले जुड़े लोगन मन अभी ले सक्रिय हो जाते। यही पाए के मोर आप सबो मन ले एक आग्रह है। आप मन प्रयास करो कि आपके घर सोसाइटी या तीर तखार के ठिया मा गणपति बप्पा के जेन मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश के माटी ले बने हो। वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन के हाथ तैयार हुए हो। जेन लोगन मन गणेश जी के मूर्ति बनाते वो मन ले घलो मोर आग्रह है कि वो मन माटी के मूर्ति ल प्राथमिकता देवें और जेन लोगन मन मूर्ति बिसाते वो मन घलो ये खचित देखें कि गणपति बप्पा के मूर्ति का के बने हैं और कौन देश में तैयार हुए है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले बने मूर्ति खचित झन बिसाएं। संगवारी हो, माटी के मूर्ति पूजा के बाद सहज रूप में पानी में विलीन हो जाते। एखर ले हमार नदिया तरिया और पर्यावरण के रक्षा होते। हमार रास्ता घलो बने रही थे।

0: और प्रकृति के प्रति हमर दायित्व घलो पूरा होते। जब हम स्थानीय कारीगर मन ले मूर्ति बिसाथन, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प ल मजबूत करथन। मोला विश्वास है कि ये पैत गणेश उत्सव में और ऐसने हर उत्सव में हम ऐसने सब्बो बात ऊपर खचित गंभीरता ले सोचबो और देश हित में कदम घलो उठाबो। संगवारी हो, हमार देश के सबले बड़का शक्ति हमार देश के लोगन मन है। देश के आने आने हिस्सा में होवत नानुक बड़का प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखोथे। ये प्रयास बताते कि जब मन में संकल्प हो और समाज के साथ मिले तो कोनो भी बड़का बदलाव लाए जा सकत है। आप मन अपन तीर तखार में होवत ऐसन प्रयास मन के बारे में मुला खचित लिखत रहो, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रहो। हो सकत है आपके तीर तखार के कोनो नानुक पहल जम्मो देश भर प्रेरणा बन जाए। अवैया महीना हम फेर मिलबो, देशवासी मन के कुछ नवा प्रयास मन के चर्चा करबो। तब तक आप मन अपन और अपन परिवार के ध्यान रखाओ। और हाँ, जल संचय तक करने करना है, बरसात के पानी के एक एक बूंद ला हमला बचाना है। कैच द रैन, ये अभियान थोरको ढीला नहीं होन देना है। तब मोर विशेष आग्रह है, वर्षा के बूंद बूंद पानी हम मिल के बचावन। गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के जनता के नाम संबोधन के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा, अभी आप सुन रहे थे महत्वपूर्ण प्रसारण हमारे प्राइमरी चैनल से। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8:30 होने को है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने

0: उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14

0: लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है, हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना। गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोता

0: सुरों को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये स्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज़पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मनला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर

0: सेवाएं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
2: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
1: तहू यार।
3: रियूट कुकिंग ऑयल योजना

0: भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
1: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
0: तहू यार,
2: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, इस प्रीलूड से ही आप समझ गए होंगे आज हम किस कलाकार या संगीतकार के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर रवि के रूप में संबोधित किए जाते एक भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्होंने कई हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत रचना की। पहले ये गीत सुनते हैं।

हिंदी सिनेमा में सफल करियर के बाद संगीतकार रवि 1970 से 1982 तक के लिए अवकाश ले लिया। बाद में बॉम्बे में रवि नाम के साथ उन्होंने सफल वापसी की। उनका पूरा नाम रविशंकर शर्मा था।

1982 में संगीतकार रवि ने निकाह फिल्म से वापसी की। इस फिल्म के लिए सलमा आगा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। हिंदी फिल्मों में रवि को बलदेव राज चोपड़ा की फिल्मों में संगीत देने के लिए जाना जाता है। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को लोकप्रिय बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि की जोड़ी मशहूर थी। दोनों की जुगलबंदी ने कई यादगार गीत निर्मित किए। रवि एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जो पहले गीत लिखवाते थे, फिर उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे, जिसके कारण उनके बनाए तकरीबन सभी गीत अत्यधिक कर्णप्रिय और लोकप्रिय रहे।

श्रोताओ, 1952 में रवि को हेमंत कुमार ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें फिल्म आनंद मठ से पहला ब्रेक दिया। वंदे मातरम गीत में समूह स्वर गायन के लिए काम पर रखा था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और संगीत की बारीकियां सीखी। रवि को जिन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया, उनमें 14वीं का चांद, दो बदन, हमराज, आंखें और निकाह रहा। उन्होंने फिल्म घराना और खानदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 7 मार्च 2012 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली।

एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

0: छह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा हो।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूं तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आई रात।
1: ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
3: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश

54 55 56 सेकंड्स। वर्क स्टेशन 1।

प्राइमरी चैनल VBS मुंबई टेस्टिंग ओवर।